सच्चे के गुण गा गुण गावत तेरी उदर सुनैद बिन सुजाए होमे बिख है जन्म कर्म

गुरु सच्चा है, दुनिया नू सच दी रोशनी दे, गुरु दे दरबार विच कूड़े दी कोई थां, उथे सच्चे ही सच मिले। सच्चा गुरु सच दी तकड़ी तोल ले, किसे दी रैत नहीं कर, फिर मेहरवान भी साचा साहेब साद मेहरो। सच्चा भी है ते मेहरो, सदा मेहर। जिस तरह माता पिता दी सारे बच्चियां ते मेहर है, माता पिता दे मन च किसे बच्चे दे मुतलक भी बुरियाई, माता पिता दी ए हर समय कोशिश होंदी है कि साडे बच्चे सुखी है। ए संत मित्र उस वाहिगुरु दी उस्तत करनी बनदी, जिस वाहिगुरु ने जिन कन की ते अखी नाक जिन जेबा दिती बोले था एडिया अमल वस्तु दिती, ओदी उस्तत कर, ओदी हमेशा सिफत। बंदे को कुछ मिल जाए असी ओदा धन्नवाद कर, ओदा थैंक्स अदा कर। डॉक्टर साहब अख विच मुफ्त दवाई पा देवे उसदी असी रीढ़ी हो जाए, मुफ्त फीस कोई नहीं, साडे मन च उसका कितना सत्कार बन। पर हजूर फरमाउंदे ने जिस डॉक्टर ने मुफ्त दवाई पा दी तेरी अख विच ओदा तू शुकराना करदा है, पर जिस मालिक ने तेनू मुफ्त अखां दित्तियां ओदा भी शुकराना करदा। ओदी भी सिफत, ओए कीर्तन सिफत। कीर्तन कीर्त प्रभ की गाव मेरी रस्म, आपा सारे मालिक दी सिफत ही जुड़े। सिफत करन वाला या सुनन वाला ओनू मिलिया की, हजूर फरमाउंदे ने जिसनू बख्शे सिफत सालाहा नानक पातशाही पातशाह। ओ पातशाह प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान, उस्तत तो तुहाडे हुक्म अनुसार सेवक गुरबाणी का कीर्तन कर। अगली पंक्ति साहबा ने स्रोतियां वास्ते फरमाई है कि सावधान, चौकड़े मार के बैठिए, मन एकाग्र, तुरदा तुरदा पानी एक थां ते खड़ा हो जाए ना, ओदे विचों मुंह दिसन लग जाए, चलदा पानी खड़ो जाए शीशे दा कम दिंदा, चलदा पानी खड़ो जाए विचों मुंह दिसदा प्यारी साध संगत, नाम बाणी कीर्तन दे सदके जे मन एकाग्र हो जाए उस मन दे अंदरों धन गुरु नानक पातशाह। मन दा जुड़ना ही गुरु ने सारे ने साचा साहेब सदवे। माता पिता दी हर बच्चे वास्ते पसंद, जे मां किसे वेले बच्चे दी गलती नू वेख के कह देंदी है मर जा, हकीकत विच ओ मां जिहड़ी है बच्चे नू नहीं कहिंदी, ओदियां बुरियाईयां नू कहिंदी है, अंदरों तां आसीस देंदी है। पूता माता की सदा ही आसीस। इसे तरह मेहरवान सतगुरु सदा ही मेहर करदा है। जे किसे वेले कोई तकलीफ दा मोड़ भी आ गया, दुख दा मोड़ भी आ गया है, इहदे विच भी कोई भला ही।
और अनजान बच्चे नू जिस तरह माता पिता की झिड़क का पता नहीं ना, उन्हू ज्ञान नहीं, पर उस झिड़क का वड्डे होके पता लगता है। जिवें माता पिता की उस झिड़क नू समझ के पढ़ जाता ज चंगे कमां च लग जाता तो मेरा जीवन सुधर जाता। इसे तरह जे किसी वे दुख आया, जे गुरु ने किसी वे झिड़क भी दिता है तो फिर सिख उदास नहीं होता। सिख दोवें हाथ जोड़ के अरदास करता है जे गुर झिड़के तो मीठा लगे, क्योंकि मेहरबान जो है। अच्छा कलगीधर पातशाह जी, भाई जोगा सिंह जिस दे अंदर होमे का बीज बोया गया, होमे वाला सिख जड़ा है वह वाहगुरु नू भांदा नहीं। हर जी हंकार ना भावे ही वेद फूक सुना, उन्हू दूर करने वास्ते सिख नू चिट्ठी दे के पिशावर भेज। समा हो गया, आनंदकारी की मर्यादा आरंभ हुई। भाई जोगा सिंह एक लाम लैके मथा टेक के बह गया, दूजी लाम लैके भाई जोगा सिंह जिस वेले मथा टेक के बैठदा है, इधर सामने सिख बैठा सी चिट्ठी वाला, उधरों भाई जोगा सिंह ने तकिया, इधरों इस सिंह ने तकिया। जिस वेले चार अखा मिलिया ते दोवां दे हथ जुड़ गए ते दोवां ने फतेह बुलाई, वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। मर्यादा कलगीधर पातशाह।

नार पराई है। प्राई स्त्रीवन लुक अंदर ठाणी, याद रख अजराइल फरेश्ता तिल पीड़े कान। भाई जोगा सिंह दे कन्ने च आवाज पई, भाई जोगा सिंह ने झट जेड़ा पैर पौड़ी ते रखे सी हेठा कर लिया, पिछे मुड़ मैनू ता कोई वेख नहीं। प्यारी सास संगत अद्धी रात भाई जोगा सिंह दूसरी वेरी फिर हुण कोई नहीं वेख, पर जिस वेले पौड़ी ते पैर रखे फिर कन्ना आवाज आई केड़ी।

भाई जोग आश्रम में पहुंचे, हजूर ने दूरू तक देखे अब प्यारी सास संगत, जिस सिख तू बगैर मेरा काम नहीं सी ना चलता, वो भाई जोगा सिंह आ गया। आज आ जोगिया साढ़े कोल आज। भाई जोगा सिंह सुन के बड़ा हैरान, मैं तो समझिया सी कि गुरु साहब मेनू जोड़िया च खड़ा करनगे, पर ए तो प्यार नाल पै बुलांदे। भाई जोगा सिंह साहबां दे कोल पहुंचे, जोगा सिंह भाई आखा जी आया, सोना सिख तू है सरदार बीबा, घर मार परिवार नू छड़ के ते साडे नाल ते कीता प्यार बीबा। भाई जोगा सिंह सोच मन, मैं तो समझिया सी गुरु अंतर जामी, जे अंतर जामी होंदा तां हुशियारपुर दी करतूत नू जानदा, जे हुशियारपुर दी करतूत नू जानदा होंदा तां मैनू सजा दे, पर गुरु तो मेनू प्यार प्या कर। जे गुरु अंतर जामी नहीं, जे गुरु इथों दिया नहीं जानता तो मेरी दरगाह कि फड़ेगा। 12 साल एवं गुरु की सेवा की, आखो सेवा अंतर जामी सतगुरु। सोचन लग सिख नू काम दे कुंड विचों कढ़िया है, हुण अशरदक दे खाते पिया पैंदा, गुरु नू पता है शरदा तू हीर पिया होंगे। हजूर ने कहा जोगे आ मेरे वल तक। भाई जोगा सिंह ने तके आ, इतना नूर सी साहबा ने चेहरे ते नजर नीवियां। हजूर ने फिर किया जोगे आ मेरे वल क्यों नहीं देंदा, तकदा फिर खा। तीजी मेरी जसेले साहबा ने किया जोगे आ मेरे वल तक। भाई जोगा सिंह ने जसेले कलगीधर पातशाह वल तक, भाई जोगा सिंह हैरान हो गया, कंबण लग गया कि तकदा है कि श्री आनंदपुर साहब दे सोने तख्ते बहन वाला ते राती वेसवा दे चवारे ते पहरा देण वाला इको ही है। दोवे हथ रो पिया। भाई जोगा सिंह अच्छा मैं पापी हां, मेनू बख्श, पर मेरा जेड़ा पोल है संगत च ना खोलो, आखो श्री वाहे अगे पिछे सजा दे लिया, जे संगत च बोलना था। हजूर कहन लगे जो गया मैं तो तेरी करतूत नू वेख के अडिठ पिया करदा, पर तू कहन लगा तेरे मन च फुरना बढ़िया कि गुरु नू पता ही कोई नहीं, मैं तो सब कुछ हर अंतर जामी जाने बिन बोलत आप, ते तू कहने गुरु नू पता है नहीं। तो भाई जोगा सिंह कहने लगा महाराज ए भी चंगा होया, आज पता लग गया है कि तू अपने सिख दी रखिया कर। कलगीधर पातशाह जी कहने लगे एदा मतलब भाई जोगा सिंह तो मेनू अजमाया है, मेरी अजमाइश की थी है। भाई जोगा सिंह चुप कर गया ते माध गुजरी दे लाल दे सामने तकिया ते क्या जो गया मैनू अगे भी सिखा ने बड़ा सुनाया पर मैं इम्तिहान च पूरा उतरिया, अजमायश च पूरा पहले जामे विच सिख ने अजमाया, बाबर दी जेल च अरदास की थी, मैं उथे पहुंच के ते बाबर दी चक्कियां पीटी। पंजे जामे च दिल्ली दी संगत ने अजमाया के चंदू हंकारी दा नाता नहीं लै, तो जो गया मैं संगतां दा हुक्म सिर मत्थे रखे, जे मैं कुड़माचारी दी असीयत च चंदू दे घर जांदा चंदू मेरे ते फुल्लां दी वर्षा करदा, पर मैं अपने सिखां दा हुक्म मर के जिसले चंदू दे घर गया तां चंदू ने मेरे ते सड़दी बंदी रेत पाई, पर मैं अजमाइश ही पूरा बिधी चंद ने मेनू अजमाया, छेवे जाने दुशाले लैके भजा जाता पिछे बादशाह दी फौज आ, बिधी चंद ने छेवे पातशाह दा ध्यान करके पठियारी दे बलदे पठ विच छाल मार। हजूर कीर्तपुर बैठे सिखो बड़ी गर्मी हो रही है जल लियाओ, छेवे पातशाह जी दे शरीर ते जिस वेले जल पाया सिंघां ने तकिया हैरान हो गए कि साहबां दे सारे शरीर ते छाले छाले हो। अधूर कहन लगे जो गया फिर बिधी चंद नू तत्ती वारी लगन दिती,
ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਈ। ਪਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਅਜਮਾਇਆ? ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨੇਤਰ ਸਜਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਜੇ ਸਾਈ ਅਜ਼ਮਾਉਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ

0: बादशाह मेनु बख्श। मैं भूल गया। हजूर कहन लगे जो गया रोई जा उतने तक जितने तक तेरे अंदर हौमे अखा थानी पानी बन के बाहर नहीं निकलती। रोई जो गया तो मेरी अजमाइश की, तू तो ए भी कहन लग गया कि गुरु नु पता ही कोई नहीं। भूल गया रो रो के भाई जोगा सिख का मन हौला फुल हो गया। अदू कहन लगे जोगिया भूल गए हां पातशाह कलगीधर पातशाह जी कहन लगे जोगिया जी भूल गए हैं तो जा तेन बख्शिया आखो श्री बस गल तो इतनी भूल कर लेनी ए इंसानी फर्ज पर जे भूल
1: असी प्यार नाल पढ़ो।

0: इतिहास लिखे प्यारी सात संगत भाई गंगा सिंह ने दो लावा लिया ते दो नहीं।
1: You are listening to SikhNet Geo, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

बेमुख होवन बेमुखा, मैं जे बेमुख मुख डिठे, बदर पापा बदर पा, मैं जे कर वैरी इठे, कर कर सिठा बेमुखा।

लिख न सकन चित्रगुप्त सत समुद्र समावन चिट्ठे चिट्ठी हूँ तुम्हार लिख लख लख एक दो एक दुठे कर कर

हूँ बेमुख मंदा चोर यार जो आ रहो पर घर जो हंदा निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश ठगंदा काम क्रोध मद लोभ मोह अंकार करंदा विश्वास घाती आकृत घन

फिर गुरु शरण साध संग लो न आवई। जैसो मन लागे पराधीन हीन दीनता में, साध संग सतगुरु सेवा न लगावई। जैसो मन किरत बिरत में मगन हो, साध संग कीर्तन में न ठहरावई।

रैन सैन समय सब लोग में संजोग पो, चकवी बेयोग सोग पागहीन जानी है। जैसे दिन करके उदोत ज्योत जगमग, उल्लू अंध कंद प्रचीन उन्मानिये, सरवर सरता समुद्र जल पूर्ण है, त्रिखावंत चात्रक रहत बकवानिये, तैसे मिल साध सं सकल

कुलहीन गुणहीन ज्ञानहीन सोपाहीन पागहीन तपहीन बावरी दृष्ट दर्शहीन शब्द श्रुतहीन बुद्ध बलहीन सूते हस्त न पावरी।

अनाथ नमो सर तो सोना दानी नमो सो भिखारी मोसो न दीन दयाल न तो सर मोसो अज्ञान न तो सो बिचारी मोसो न पतित न पावन तो सर मोसो बिकारी न तो सो उपकारी मोरे हैं अवगुण।

चरनी मथा गुरु चरनी मथा उस्तत मन में करन का कर्मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रसना।

नैनों पे ठाकुर का रंग, साध संग बिन से सब संग, चरण चलो मार्ग गोविंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म सर्वण हर कथा,

0: सकल जग है जैसे सपना, बिन सत लगत न पार, बारू भीत बनाई रसपत, रहत नहीं दिन चार, तैसे ही ए सुख माया के उर्जो कहां गवार,
1: अज हूं समझ कछ बिगड़िया न

मिल साध संगत पद केवल ना हूं साडे जुम्मे कम लगा ये असि किन्ना कनवादे हां। सत्संग जी यकीन करो मैं पुस्तक पढ़ के आप जी बेनती कर रहा हूं उसने पूछना है जिंदगी का सफर हौले हौले तय करो तुमको उसने बुलाना है तुम्ही को लौट जाना है। जिंदगी का सफर हौले हौले हौले तय करो तुमको उसने बुलाना है तुम्ही को लौट जाना है। तो जदो उन पूछा जाके पे बेटा बच्चिए धीए वह भी ऐदा ही बुलांदा सत संग जी मिठ बोलड़ा है साजन रब जी बहुत शीरी कलाम है। उन पूछना बच्चा तेनू आ कम दे के भेजा सी के भजो गोबिंद भूल मत जाओ मानस जन्म का यही लाओ तेरे खाते विचो तो कबूतर निकलिया नहीं हुण की करा मैं। धीए बच्चिए तेनू भी कम दिता सी के बाबे दे घर केवल नाम है नाम दी पूंजी है नानक के घर केवल नाम इसलिए तेरे ते फर्ज लाया सी के केवल नाम जपोरे प्राणी परो एक की सरना तै किन्ना क कीता हिसाब ते सारे देना पैना इसलिए अगे जिन्ना क कीता कीता आगे समझ चलो नंद लाला जो बीती सो बीती हुण तो लग पई है। मैं शायद अगे भी बेनती कीती होवेगी मैं बहुत बहुत चिर हो गया ना तुहाडे चरणा विच आंदिया कई साल हो गए ने ते एक ट्रक सड़क तो लैके खड्ड वे डिग पिया हुण ओह चलण जोगा ने खड्ड वे डिग पिया है पर मालक की करदे ने ओनू टो करके बाहर कढ लैंदे ने ठीक ठाक करके ओहदे विच समान लद दिंदे ने मंजिल वल ओहदा मुंह करके ड्राइवर नूं कहिंदे चल वे बच्चा लै जा हुण ट्रक ते विच डिग्गिया होया सी पर कढ लिया वा एन इसे तरह मेरी बेनती है सारे अगे हाथ जोड़ के जिन्हें कल तक अजे नहीं शुरू किया हुण शुरू कर लो मंजिल वाल नूं मुंह होवे तां फिर तां यकीन करो कि मंजिल नेड़े आई का आई हर कदम ते मंजिल घटदी जाएगी। अजे रुख दूजे पासे नूं कीता जाना होवे लंडन नूं तुरे होइए इधर लीड्स नूं फिर कदों आएगी मंजिल नहीं आएगी। महापुरुष यही कहिंदे रहे है कि नाम सिमरन करो भजन करो परमात्मा नूं याद करो। जद महापुरुष अपना फर्ज निभा रहा है तो सानू भी करना चाहिए। एक संत महापुरुष तुरे जाते से उन्होंने चुराहे भी देखा एक बहुत काला स्या धुआं पिया है धुआं पिया है नाल चेले बाल के भी सी महापुरुषा ने भी देख लिया धुआं बिल्कुल अकड़ के खड़ा ते काला स्या नीला होया पिया उन्होंने झट चुक लिया महापुरुषा ने चुक लिया ते धुएं ने डंग मार दिता जहरीला एडा सी पे पकड़िया पकड़िया हाथ नीला काला स्या सुज के एडा हो गया नाल दे चेले कहन लगे बाबा जी महाराज जी पे नु रहन देना सी पिया इत्थे देखो ना तुहाडे इसने डंग मार दिता तुहाडे हाथ दी हालत की हो गई है। कहिंदे बच्चे सुनो गल सुनो बचन सुनो जेड़ा इहदा काम सी उह कर रहा है जेड़ा महापुरुष का काम है पे चुकर के रांभे कर दे इत्थे तो कोई राह ही जांदा होवेगा को मंजिल ते तुरिया जांदा होवेगा ओहदा लड़ जाएगा ना कुछ नु दारू मिल सकेगा ना दवा हो सकेगी। जद ए अपनी आदत नहीं छड़दा तां मैं अपनी फर्ज क्यों कपाही करा जे अपनी आदत नहीं छोड़े उर्दू दा शेर जे अपनी आदत नहीं छोड़े हम अपनी खूह क्यों बदले। इसलिए महापुरुष दा हर एक दा कर्तव्य है कल नूं इत्थों अगे दर्शन दीदार करांगे गुरु जी सच्चे पातशाह रहमत नाल तुक कहीए ते कीर्तन की संपूर्णता करिए। आदर योग मेरे परम आदर योग संत बीबी जी सुरिंदर कौर जी तशरीफ फरमा होए ने बहुत भागा की बात है। जिस दिन असि इधर आने के तैयारे में मार्च में ता भी सानू दर्शन देन आए सन इतने आके भी कल मैं पता लग गया कि आदर योग बीबी जी भैन जी आए हुए ने तो मन गदगद होया है हुण संगत के दर्शन करके मन बड़ा प्रसन्न होया। गुरु सच्चा पातशाह जो इन्होंने जुम्मे ड्यूटी लाई है ना मालक ने तो यह नभा दे जान ओदा नाम जपा दे जान तो कहो सत्संग जी।

एकोंकार सत गुर प्रसाद सत्संगियो एक ओंकार परमेश्वर का नाम है। परमेश्वर का नाम सत है, मिलता किमें गुरां दी कृपा दृष्टि दे सदका। ऐसे सतगुरु जी महाराज फरमाते हैं

हे पाशाह साढ़े ती कृपा कर तेनू वेख वेख के असी जिउणे तेरे दर्शन जिहड़े आ उह साढ़े हर वेले मन दे विच वसे रहन तेरे दर्शन तो बिना साडा जीवन भागां बलियो ना होवे ते ना ही असी उस समय नू वेखीए जदों तू होवे उदों मैं होवां जदों तू बख्शिश देवे उदों पातशाह तेरे चरण कमलां दे विच मैं बैठा होवां ए सानू बख्शिश दे दे ऐसे सतगुरु जी महाराज फरमाउंदे हन।

बिना भजन भगवान दे भाव भगत बिन ठौर न ठाई। लहे कमाणा एत जुग पिछली जुगी करी कमाई। पाया मानस देह नो एथों चुकिया ठौर न ठाई। कल युग के

भाव भगत परवान है होम जग ते पुरब कमाई करके नीच सदावना ता प्रभु अंदर लेके पाई कल जुग

जाके ओकार के आकार नाना प्रकार श्री मुख शब्द गुर सिखन सुनाए हैं। जोग भोग नई वेद जगत भगत जाहे असन बसन गुर सिखन लिभाए हैं। निगम सेखादिक कथिक नेत नेत कर पूर्ण ब्रह्म गुर ज्ञान सिखन लिखाए हैं।

0: जोगी संत्या मंजित्यान के नाम करता सुख मुठ नानन काया कागर सत्या मन संतोख उपजे देने के विचार दे दे मंगा सा गुणा सब करे संसार
1: क्यों ना यार।

सत्यता शुरू भुला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनवार कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पहनहार कूड़ मिया कूड़ बीबी का पोएगार कूड़ कूड़ ने

0: बारा को रंग सो पे सुचरा सरपातन हो
1: नान पति जे रे पे कुले सोना कोई महल्ला पैदा।

जुगत न जाने छद में करवान सबको पूरा आपे होवे कट दुखिया पत परवाना।

अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है वाहे गुरु अलोक है अशोक है अकर्म है

हे निरंकार, हे वाहिगुरु, हे अकाल पुरख, तू सारिया ते मेर कर, सारी सृष्टि ते मेर कर। तू मालक है, तू प्रतिपालक है, तू राखा है सबे जी समा, तू सारिया ते मेर कर। जो ईर्खा, द्वेष, वैर, विरोध जो मना च अग लगी हुई है, दूर कर, सारे अनु समत बख्श। जगत सड़ रहे है, अगा लगिया हुई ने, तू कृपा कर, तू मालक है सारिया ते कृपा कर। जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा धार, जित दुआरे उभरे जिते लेहो ओबार। तू सारिया ते मेर कर, सारे तेरे ने, तू सारिया की कृपा कर। ये अरदास है कि अन्न पानी मुच उपाए, ये पदार्थ सारिया नू दे, सारिया ते कृपा कर। दुख दलिद्र धन दर सारिया का दुख दूर कर, दलिद्र ये सब दूर कर, तू सारिया ते मेह कर।